प्रभाती भक्त बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन चंदन मस्तक पाती रिद अंतर कर तल काती ठग दिष्ट बगा लिवलागा देख वैष्णो प्राण मुख भागा काल भागवत बंद चराम क्रूर दृष्ट रता निस्बादंग रहाओ नित प्रत असनान शरीरं दोए धोती कर्म मुखीरं हृदय छुरी संध्यानी पर दर्व हिरन की बानी सैल पूज सचकर गणेशं निस जागस भक्त प्रवेशं पग नाचस चित अकर्मं ए लंपट नाच अधर्मं मिर्ग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं।

बिन सतगुर बाट न पावै, कहो बेणी गुरमुख त्यावै, बिन सतगुर बाट न पावै। एक ओंकार सतनाम करता।

सिमर। एह तेरे काज है माया को संग त्याग, प्रभु जू की शरण लाग। जागत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, रहाओ सुपने ज्यों धन पछान। काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे, बसदा को राज है। नानक जन कहत बात, बिंस जै है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। जय जावंती महला नौवा, राम भज जन्म सरात है। कहो कहां बार बार, समझत न क्यों गवार। बिंसत न लगे बार, ओरे समगात है। रहाओ सगल भरम डार दे, गोविंद को नाम ले। अंत बार संग तेरा, एह एक जात है। बिख्या बिख ज्यों बिसार, प्रभ कहो जस हिये तार। नानक जन कह पुकार, औसर बेहात है। जय जावंती महला नामा, रे मन कौन गत होए है तेरी। एह जग मैं राम नाम, सो तो नहीं सुनियो कान। विखियन स्यों अत लुभान, मत नाहन फेरी रहाओ। मानस को जन्म लीन, सिमरन नह निमख कीन। दारा सुख भयो दीन, पगो परी बेरी। नानक जन कै पुकार, सुपने ज्यों जग पसार। सिमरत न क्यों मरार, माया जा की चेरी। जय जावंती महला नवा, बीत जै है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै प्राण, समझत नह रे अजान। काल तो पहुँचे आन, कहाँ जह भाज रे राहो। आस्थर जो मान्यो दे, सो तो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निलाज रे। राम भगत हिए आन, छाड़ दे तै मन को मान। नानक जन ए बखान, जग में विराज रे। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभाओ निर्वैर। अकार मूर्त अजूनी सैभंगर प्रसाद। श्लोक सहस कृति महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग। सिर पूज सबगल समादंग, मुख झूठ भुखण सारंग। त्रैपाल तिहाल विचारंग, गलमाला तिलक ललाटंग। दुय धोती वस्त्र कपाटंग, जो जानस ब्रह्म कर्म। सवन फोकट निश्चय कर्म, कौ नानक निश्चय त्यावै। बिन सतगुर बाट न पावै, नेफलं तसै जन्मस। जावत ब्रह्म न बिंदते, सागरं संसार सै। गुरप्रसादी तरह के

कृष्ण सर्व देवा देव देवा तयात्म आत्मं श्री वासुदेव स जे कोई जान सपेव नानकता को दास है सोई निरंजन देव। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख नूर यार करे फुराए संख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पास नानक नीच कह क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिपाटी सदा सलाम संत नाम संत नाम गम गम संत दो असंख कहें सिर्फ

0: में जाए साला जी फला है नदियां से बाहर कौन सुम न जान समुद्र सा करता
1: अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुनना अंत

फिर हुक्म न करना जाई। सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए।

भंडारा, शिफ्ति भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जा

शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत्संग।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुध जी, हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसारण हारा।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता। तेरी अनिक कर है हर पूजा जी, तप तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दै मोहे बचावहु।

आज सुंदर है पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाए प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंतिक कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भका निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए फसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत कुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

ठाकुर का पयो जिसका सब सदारु जेको खावे जेको पुंछे किसका हुए उदारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म।

गुण गोविंद गाही, सब सहनो कृपाल सुमाले, साही साही बिरथा कोई न जाई, जी आवे तुदयाही। श्लोक महल्ला पंजवा।

किस सिमरत सुख होय सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर

शब्द स्वरूप सतगुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतगुरु जी आप जी ने अपार कृपा रहमत कीती, अमृत वेले तो लै करके खुले दर्शन दारे बख्शिश कीते, नदरो नदरी निहाल कीता। आप जी का कोटान कोट शुक्र सतगुरु जी।

रहरा सहबाणी के पाठ हुए गरीब नवाज आप जी की अमृत बाणी दे पाठ करदे आ दस रिया पासों हुई बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी अगे तो सावधानता बख्शिश कर।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहना पार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोय असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोय असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह

जिन्हें भी शरीर बैठे हो, धुर की बाणी जिन्हों की रसना ते आ गई, इंज जानो दी कृपा हो रही। उंज जबान सारा सारा दिन बोलती, पर कर्मा वालिया रूहां महाराज जी दे वचन ने, सारसना तन तन है मेरी जिंदड़ी, गुण गावे हर प्रभ के रे राम। जिस बाणी ने तड़फदे हुए संसार विच ठंड पाई हुई है, जिसनों किते सुकून नहीं मिलता, जिसनों माया विच भी सुख नहीं मिलता, जिन्हें पदार्थां विच रुझ के वेख लिया पर गल बनदी नहीं। अत दे अमीरां दी जे गल करिए, बंगला साहब च ले जाओ, बाला प्रीतम दे श्री दरबार साहब सीसगंज साहब च ले जाओ, जिन्हां कोल धन पदार्थां दी गिणती मिणती नहीं, वो सारा कुछ छड़ के जोड़े खाने विच बैठे ने। जे उन्हां नूं पुछिए भाई तुहानूं सुखां दी कमी है, एक इशारे ते कई कई नौकर तुहाडे दौड़दे ने तुसीं जोड़े खाने विच, अगों हाथ जोड़ के कह दें भाई साहब मेरा वहम सी भाई माया विच सारे सुख ने। नहीं, जे अंदरला चैन सुकून शांति लैनी है ना जिंदगी दी, वह बाबे नानक दे जोड़े खाने विच पई हुई है। रसना ते बाणी होवे, हथां विच सेवा होवे। सच्ची प्यारियो, ये महाराज ने भांडे मांजने, जोड़े झाड़ने, हो सकता है तेरे हत्थां विच तेरे किसी नौकर दा ही जोड़ा होवे, मैं मेरी नूं मिटाउण वास्ते कीता, उहदा ही रूप हो जाए। अवल अल्लह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे वाली अवस्था बन जाए। कहिंदे ने जिहड़े फिर वीर गुरमुख पैणा गुरसिख भावना नाल बाणी गाउंदे ने ना, फिर खुशियां दे दरवाजे खुल जांदे ने, सफल हो जांदे ने जीवन विच। वह दुखां विच्चों भी सुख वाली अवस्था बना लैंदे ने। वह अपनी भावना उच्ची सुची बना के गुरु दे दरबार विच सुनहरी इट बन के लग जांदे ने, पर हैन विरले। महाराज कहिंदे ने हैन विरले ना ही कणे। तुसीं सारे मिलके गायो, पता नहीं किहदा गाया परवान हो जाए, गुरु गरीब निवाज है। खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म, वो गरीब निवाज है। गरीब निवाज गुसैया मेरा, जेहो जी भावना बनाओगे ना सतगुरु नो, जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए। कहिंदे ने ओहो जीआं बख्शिशां मिल जाणगीआं।

बोलो जी अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेन त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जे दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दे दर जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओट गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सचे पातशाह आप जी दे भाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया है सतगुरु जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जिया ने खुले दर्शन दीदार देके निहाल कीता रात दे दीवाना दी संपूर्णता हुई आप जी दी सेवा संभाल सोलह साहब जी दी बाणी दा जाप होया महाराज जी आप जी दी हजूरी विच विचरदियां उठदियां बहिंदियां बेअंत भुल्लां हो जांदियां ने आप जी बख्शण योग हो बेअंत संगतां आप जी दे सोहणे दरबार दियां चरणां दियां हाजरियां भरियां ने सब दियां झोलियां मनोकामनावां पूरियां करके भेजना सतगुरु जी रहण आई है सुखमई आनंदमई बतीत करायो अपने टहलियां नूं कीर्तनियां नूं सदा साज के निवाज के रखियो आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास

नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै

दर्शना प्रभु को सिम रहसे तनवंते, प्रभु को सिम रहसे पतवंते, प्रभु को सिम रहसे जन परवार, प्रभु को सिम रहसे पुरख प्रधान, प्रभु को सिम रहसे बे मोहताजे, प्रभु को सिम रहसे सर्व के राजे, प्रभु को सिम रहसे

भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज सुमानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

पर ब्रह्म सोए जू जू कह सुमुक्ता हुए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्च कथा अष्टपदी। साधग संग खूजल होत सासंग मल सगली खोत साधग संग मिटै विमान साधग संग प्रगटै सुगयान साधग संग बुझै प्रभ नीरा सासंग सब होत नबेरा साधग संग पाए नाम रतन साधग संग एक उपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा परमाए सुमानी साधग संग गोचर मिलै साधग संग सदा प्रफुल्लै साधग संग आवै बस पंचाओ साध संग अमृत रस पुंचाओ साध संग हुए सब की रेन साधग संग मनोहर बैन साधग संग नकत हुंतावै साध संग स्थित मन पावै साधग संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीर साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधग संग न भीगा पैरु साधग संग ना ही कुमंदा साध संग जानी परमानंदा साधग संग ना ही होता साधग संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधग संग न कब हुतावै साधग संग सदा सुख पावै साध संग बस्ता गोचर लै साधु कै संग अजर सह साधग संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुचै साधग संग जड़ै सब धर्म साधग संग केवल पार ब्रह्म साधग संग पाए नाम निधानु नानक साधु कै कुर्बानु साधग संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कचकाल दर्शन भेट तोत निहाल साध के संग कलुक तहरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधग संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध रिज बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधग संग सुनु हर नाउ साध संग हर के गुण गाऊ साधग संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधग संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधग संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बखियानै साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कुछ बिन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोप जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागै तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसदा कु खोदै कु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुणाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जलाओ ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पही नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यानु ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन बाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भीर, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी सगल का ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतार है जो अंतर नाम, सर्व में पिके भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रय रूप न पिक नेत्र साथ की टहल संग हित, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, बैसन सोजी सुपर सुपर सन, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भक्त कीर्तन संग्राचे, मन तनंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म, सासुं पापा मल होवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्मै सोदै, राम नाम सारस पीवे, पंडित कह बदी जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जाने स्थूल, चौवरना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होइ, सासुं पावै जन कोइ, कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुगत पात्र को तारै, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवासु, तिसका नाम सतराम दासु, आत्म राम तिस निद्री आया, दास संतन पाहि तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संगात मुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञात्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर्क तैसा सोग, सदा नंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताय साई जुगत नानक हो पुरख कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन्नाउ, आपे करन करावन जोग, प्रभावै सोई फुन हो, पस्तुर व्याप अनंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग,
जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दया, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जानु अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पह तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिस्तर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्या वह नान करते कांत न पावह, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश परमाहे, कई कोट पर देश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट शशि असुर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस तिस पाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगात, सब ते नीरै सबूते दूर, नानका बलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बोजूनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजन्ते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहन्ते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरकंड, कई कोट काश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत किन्नु विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बहुपात, प्रभ ते होए ब्रह्मा हे समाता, कंत न जाने कोए आपे आप, नानक प्रस होए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम परगास, कई कोट तत के बेटे, सुदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण है, जल थल मही रसोए। अष्टपदी करण करावन करण है जोग, जो तिस भाव है सोई होग, किन मैं थाप थापन हारा, अंतने किच पारा वारा, हुक्मे तार अतर दहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब में रिहा समाई, प्रभावै मानो कत पावै, प्रभावै तां पाथर तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै तां पतत उधारै, आप करै अपन बिचारै, दोहा सिरिया काप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अन जानत बिखिया मैं रचै, जे जानता अपना बचै, भरमी पूला दै दिस्तावै, निमक माए चार कुंड फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, किन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा न गनै जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख वडाई,
इसका बालो नाही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई पुन थियो। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू बकास पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कबहू नृत करै भोपात, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू हुए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै, कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिर साधिक मुख्यान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, निक जोन भरमै परमिया, नाना रूप जो सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू सा संग त्यो पावै, ससान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान कर नहीं विनाश, मंत्र नाम रतेक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जले आई फताना, त्यो ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान सलोक, सुखी बसै मस्कीनी आय आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर आज महानु सो नरक पाती होवत स्वानु, जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावै जिन मरे बहु जोन फरमावै, धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता हुए करगर बावै, तिन समान का संग न जावै, बहुलस कर मानुकूपर करे आस, पल पीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन मैं हुए जाय पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसादा का मिटे अभिमान, सो जन नानक धर गए परवान, कूट कर्म करे हो तारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनेक जतन करा तुम नहीं द्रवै, हर दरगह को कैसे गवै, आपस को जो पला कहावै, तिसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए, कहु नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब ये जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक कहो छूटे, सहस कटे लग कोट तावै, तृप्त न आवै माया पाचै पावै, अनिक भोग विख्या के करे, न तृप्त आवै खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोत वृथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक कर जाप, करण करावन करण है हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी तिष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप रसोए, जो किस के नो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू कै संग, बूझै देखै करै विवेक, आपै कापै अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहा समाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप किनु अपन विस्तार, सब कछ उसका करने हार, उसते भिन्न कहो किछ होए, थान तनंतरी कै सोए, अपने चलता पगर नेहार, कौत करे रंग आपार, मन मया मन अपने माही, नान कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सत सब कीना, कूट मदे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, असुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरण जो जन परै, सो जन उदरन हार,
संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन, संत के हथि कुर कह न कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाही, नानक संत पावै तावै पीगत वाही, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई, संत का निंदक मा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा वियोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तां उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावे तां ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर से थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचना है, अपन बीजा पे ही खाही, संत के दुखी को वर्ण रखना, और नान संत भावे तां ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली थलफड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव केंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिलकी तमाहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरे न जीवाइय, संत के दुखी की पूज्य नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कीर्तन मिट कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब कर तिसको करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याहो सास गिरासु, सब कुछ वर्तै जिसका किया, जैसा करे तैसा कोची, अपना केला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजो से आनप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। अष्टपदी। मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुत न तृष्णा लग गया, मार रखे को आप, मानुक है किच नाही हाथ, जिसका हुक्म भूस कोए, जिसका नाम रखंट परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लग गए कोए, उस्तद मन में कर निरंकार, कर मन मेरी सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेग ठाकुर का रंग, सासंग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, चेतनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत की उसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपना सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै, सा संग हर हर जस कहत, सर्व रूप त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जमती भाषा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै,
सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस पर वे अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया, सो दत्त सो दत्त सो दत्त सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बुझया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनेक जुगत रच ताप ताप, विनाशी नाही किछ खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदारण, प्रभु के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाई हुए सो हुए, करने हर पछाने सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे समाए समाए, हुए सुख निदान उन्हों बने आए, आप उसको आप तीनू मानु, नानक प्रभु जने को जान, सलोक सर्व कला भरपूर, प्राविरता जननहार, जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गाढ़न हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन वाही, तिस ते वृत्ता कोई नाही, रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनासी प्रभु आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जपे घर नाम, रूप वंतो ना ही मोह है, प्रभु की जो सगल कट सो है, धनवंता होए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया दर्व है, हथ सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वै, जे को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सो जन सदा रोग, जो मंदर को थामै थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखा नाव चढ़ तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तीन संतन की बाँचो तूर, नान की हर लोचा पूर, मन मूर्ख का ही बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुप्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे जान, कौन बसताई तेरे संग, लपटरियो रसलो भी पतंग, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पत छेती कर जाहे, जिस वखर को

आई रूप मिटे हर कद लाई सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु तू हर कह नाई था दिस्ता होता बैठाई था को बिघन न लागे कोई जा कर दे बसे हर रोई कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हो आस भगत पाया तम प्रगाश तित कर जाए बसे अविनाशी गौ नानक काटी जम पासी तत् विचार कह जिन साचा जन मरे सो काचो काचा

प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल स्यो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखे आसे जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने।

सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, मखर के गुण गाए, अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पलीसो करनी सो बातन वंत, हृदय से पूरन गुरमंत।

किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभय का तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे।

0: चतुर चक्र अहर्ता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र बासे।

0: को देख रहे हो मत कहो न देखिए प्राण पति के।
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते करती विनय करती के।
0: माते मतंग जरे जड़ संग अनूप अतंग सुरंग सुवारे।
1: कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे।
0: भारी पजान के भू पली विद नावत सी।

पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ विपोखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गल माला तिलक ललाटं

संत गुरु रामदास जी महाराज जी के पावन पवित्र वचन, जो हमरी विद होते मेरे सतगुरु साहब विद तुम्हार जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज सोढ़ी सुल्तान दा गुर तक दी गुरपुरब मनारे गुरु प्यारे सतसंग जीओ, अज दा महान पवित्र दिहाड़ा ते सतगुरां ने अपने बचना दे विच दर्शाना कीता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पुछता, गुरु सतगुर संग कीरे हम थापे। और लाहौर दी गलियां विच बाल अवस्था दे विच सतगुरां ने पिता दा साया सिर तो उठन तो उपरंत कुंगड़ियां बेचण दा काम कीता। फिर उन्हां गलियां दे विच जिथे जिथे मेरे मालक धन गुरु रामदास जी महाराज जी दे चरण पए ने, असंगता उत्थे दी चरण धूड़ी ला के मत्थे ते उड़ पागे समझदे हन। फिर डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहा, मालक जी ओ स्थान ओ पावन पवित्र बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, ओ जोत जड़ी है श्री दरबार साहब अमृतसर, डिटे सबे थाव नहीं तुद जिहा, ओ स्थान जिते नेता प्रति हर प्राणी ओदे दर्शन दिदारे नू लोचदी है, नेता प्रति लखा ही प्राणी पहुंच के नमस्कार करदी है। सो आओ सतगुरा दा अगला शब्द, हर की उड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया माण दिवाए। क्यों? क्योंकि ਉਹ ਸਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕਿਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਮਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥ ਹੈ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਕਮ ਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ, ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ, ਹਰ ਕੀ ਉਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ।

तनुग्रहण दास जी महाराज। ओ पावन स्थान कितना महान है, जीते सतगुरा ने चार दर रखे हैं, किसी दर तो कोई भी प्राणी आके उस माल प्रो दे नाल जुड़ सकता है। डिठे सभ्य था नहीं तुद जिहा,

सत्तासुर निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैरम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत मूड़े आ करे संत मलेच मल पाए असंत

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाय संख पापी पाप असंख मूड़े आर करे असंख मलेच माल पाए असंख निंदक करें

धर्म करमी करमी सोहन पंच प्रवान नदरी गर्म सोवन कच्छ पाई उठ पाए नानक गया धर्म खंड का एव ज्ञान खंड था किते पौन पानी वह संतर किते कान है किते परमे घाट करिए गुरु ग्रंथ में

निरपराकृत निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी शैलम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर कर संख मलेच मल पाखाए असंख निंदक करें पा नानक नीच कह जा वर अन जावा दे जो तुम पावे सही परिपा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंख

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सवे कच्छ खाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड था एहो ज्ञान खंड था कित्ते पौन पानी वैसंतर कित्ते

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूर्ख आर्य फिराए संत मलेच्छ मल पाए असंत निंदक

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वहाँ संत पापी पाप अशंत कूड़े यार करे फिर संत मलेर मल पाए अशंत निंदक करें नान